0: And we just heard the great Ali Akbar Khan with Mother Goddess, which is a rendition of Rag Bharavi. And that's off of the album Garden of Dreams, an excellent modern interpretation of various ragas with complex instrumentation. Very sentimental, very beautiful. We seem to be having a sentimental show and just sort of came together that way. Lots of love and sentimental feelings. And along those lines, let's listen now to some Abida Parveen with Balohua Maramatki off of Sufi Queen Abida Parveen.
1: Sufiyon santon ke haan maut ka tasavvur bade khoobsurat roop leta hai. Kabhi naihar chhoot jata hai, kabhi chola badal leta hai, jo marta hai wo jee uthta hai. तरह तरह से अंत आनंद की बात करते हैं. कबीर के यहां यह ख्याल कुछ और करवटें भी लेता है. एक बेतकल्लुफी है मौत से जो जिंदगी से कहीं भी नहीं. माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए. माटी का शरीर माटी का बर्तन, नेकी कर भला कर, भर बर्तन में पाप पुण्य और सर्पेले.